106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं बिग 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: 106.2

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender, where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
2: गेट रेडी फॉर अ ट्रेजर हंट लाइक नो अदर। इंदिरा कुमार, भूषण कुमार एंड अशोक ठाकेरिया इनवाइट यू टू द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर ऑफ द ईयर, धमाल 4, स्टारिंग अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार, रिलीजिंग ऑन 10th जुलाई। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म, पावर्ड बाय बिग 106.2। बिग 106.2.

0: Big 106.2. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Yeah, let's go. The Big Weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
3: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Hum hai is par.

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender. Where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hey, this is Shirin on the Big Millennial Weekender on Big 106.2. तो एक और सैटरडे आ चुका है, एक और बार मैं आ चुकी हूँ बहुत सारे अटपटे आइडियाज के साथ. मेरे साथ यहाँ पर ज़ोरा है. हाय ज़ोरा, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग शिरिन. आज क्या बर्बाद करने आई हैं?
1: अरे यार ज़ोरा प्लीज, पता है मुझे यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे कितने डीएम्स आए लोगों को. मेरी जो कास्टिंग है इतना अच्छा लगा. हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कास्टिंग एजेंसी खोल लेनी चाहिए.
2: और मुझे किस मूवी में डालोगे आप?
1: अब वो मैं डिसाइड करूंगी. बाकी की डिसाइड करनी बाकी है अभी मूवीज, ठीक है? लेकिन आज मैं कास्टिंग नहीं करूंगी, थोड़ा थक गई हूँ मैं कास्टिंग करके. ठीक है,
2: अभी क्या बनी है? म्यूजिक डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर?
1: नहीं, आज मैं ना एक्चुअली सब लोगों को एनालाइज कर रही थी बॉलीवुड में. तो जितने भी हमारे स्टार्स हैं, हमारे यू नो 90s 2000s के, उनमें से सबसे इम्पैक्टफुल डेब्यू जिनका हुआ है, तो उन चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. बिकॉज ये चीज मुझे आइडिया देती है कि मैं जब कास्टिंग करूंगी तो अपने स्टार्स को कैसे इम्पैक्टफुल, यस इम्पैक्टफुल डेब्यू उनका मैं कैसे कराऊंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरू से, बहुत ज्यादा शुरू से नहीं, लेकिन शुरू करते हैं अजय देवगन से. ओके, बिकॉज फूल और कांटे ये जो मूवी आई थी, स्टोरी बहुत ही अच्छी थी बोल सकती हूँ मैं.
2: नहीं,
1: यू मस्ट रीविजिट. ओके, यू हैव नॉट विजिटेड एट ऑल. ठीक है, स्टोरी बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, कि मेक बिलीव स्टोरी थी. बट अजय देवगन का जो उसमें कैरेक्टर था और जो एक्टिंग थी और जैसे उसका प्रेजेंस था और जो उसको जैसे पोर्ट्रे किया गया था ना, दैट वॉज रियली फैब. इसी वजह से, या इट वॉज डेफिनेटली इम्पैक्टफुल उस टाइम पे. ऑल दो ही डिड नॉट हैव द कन्वेंशनल गुड लुक्स एज यू वुड इमेजिन, बट ही डेफिनेटली डिड नो हाउ टू एक्ट. तो वो तो
2: करोगे आउट ऑफ 10?
1: यार शायद मुझे करना चाहिए ना, देन मे बी
2: खुद बैठ के जो कास्टिंग की है, क्रिटिसाइज किया है, वो कुछ नहीं. रेट कैसे करूं मैं अब?
1: नहीं, आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8/10. तो ये जो मूवी थी फूल और कांटे, बहुत ही मतलब सिंपल सी स्टोरी. सिंपल सी स्टोरी मतलब यू नो देयर इज अ हीरो, देयर इज अ हीरोइन. हीरोइन इज मधु द वन एंड रोजा.
2: करेक्ट,
1: पीपल विल नो हर लाइक दैट. तो मधु वाज द वन एंड वो उसकी लव इंटरेस्ट है. अब अजय देवगन के पापा हैं अमरीश पुरी. अमरीश पुरी जी जो हैं वो बहुत ही बड़े डॉन हैं. उनका जो है अंतिम समय निकट आ गया है, तो वो चाहते हैं कि अब उनका बेटा उसको जो है आगे संभाले. बेटे को नहीं करना. मधु उनको चेंज करना चाहती है, लेकिन फिर कोई उसको, अजय देवगन और मधु का जो बच्चा है उसको कोई और किडनैप कर लेता है.
2: What?
1: जो कि अमरीश पुरी के दुश्मन होते हैं.
2: What?
1: और फिर अल्टीमेटली, हाँ अल्टीमेटली अमरीश पुरी जी जो हैं वो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने नातिनी पोते के लिए.
2: दुल्हनिया ले जाएंगे मे बी, जा सिमरन जा बोल के सैक्रिफाइस कर दिया.
1: नहीं, वो जान ही सैक्रिफाइस कर, जान ही न्योछावर कर देते हैं. हाँ, ताकि यू नो वो लोग सुखी से रहे. सो दिस इज द स्टोरी. वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था अजय देवगन का वो जो स्प्लिट एंट्री, दैट इज फुल स्प्लिट करते हैं वो दो गाड़ियों पे.
2: यहाँ पे
1: या इस मूवी से ये हुआ था.
2: दिस वाज नॉट समथिंग रोहित शेट्टी केम अप विद.
1: नो,
2: अरे ये तो मतलब दूसरों के
1: क्रिएटेड. एग्जैक्टली,
2: फ्री राइड कर रहे हैं.
1: नहीं, इट वाज रिक्रिएटेड. वो जो लोगों ने फूल और कांटे जैसी मूवीज देखी है उनको पता होगा.
2: इट रिमेन्ड आइकॉनिक.
1: यस डेफिनेटली. सो दैट वाज द फर्स्ट इम्पैक्टफुल डेब्यू दैट आई कैन टॉक अबाउट. और भी बहुत सारी इम्पैक्टफुल बातें लेके मैं आने वाली हूँ. राइट नाउ लेट अस गो एंड लिसन टू द सॉन्ग एंड मेक आवर सैटरडे मॉर्निंग एन अमेजिंग वन.

0: That was Mohit Chauhan with his magical voice on the song जो कि तनु वेड्स मनु मूवी का है. Alright, this is me, Shirin. एक बार फिर Big Millennial Weekender पे मैं आ गई हूँ Big 106.2 पर, जिसमें मैं interesting से topics लेके आती हूँ, जिसमें कि जोहरा जो है कभी कभी वो इतना गुस्सा हो जाती है मुझसे कि क्या बोल रही हो तुम, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी. मेरी आवाज बोलने
1: silent treatment देने लग जाती हूँ.
0: नहीं, बहुत सारी चीजों से एक्सेप्ट भी करती है, एग्री भी करती है. तो आज जो है हम बातें कर रहे हैं अबाउट इम्पैक्टफुल डेब्यू परफॉर्मेंसेज बाय स्टार्स इन बॉलीवुड. तो पहला मैंने अजय देवगन का नाम लिया था, फूल और कांटे. सेकंड नेम दैट आई वुड लाइक टू टेक इज शाहरुख खान. शाहरुख खान की पहली मूवी.
1: फाइनली समथिंग आई विल नॉट गिव यू माइनस पॉइंट्स ऑन.
0: यार ऐसा मत बोलो यार. ओके, शाहरुख खान की पहली मूवी, ठीक है. अभी इस पे बहुत लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं. कुछ लोग बोलते हैं बाजीगर, कुछ लोग बोलते हैं माया मेम साहब, कुछ लोग बोलते हैं दिल आशना है. नहीं, इन सबसे अलग मूवी दैट इज दीवाना. दीवाना इज द मूवी विच इज द फर्स्ट वन दैट केम. एक्चुअली जो आनी चाहिए थी दैट वॉज दिल आशना है, बट देन यू नो इन द मेकिंग एंड ऑल दैट पहले दीवाना आ गई. एंड दीवाना मूवी में शाहरुख खान ने डेब्यू किया. ऑब्वियसली मतलब उसमें ऋषि कपूर वॉज अ मच बिगर स्टार एंड दिव्या भारती ऑल्सो वॉज अ मच बिगर स्टार. तो उन लोगों के नाम बहुत ज्यादा मतलब आगे आए थे. शाहरुख का भी नाम आया था, बट देन यू नो हिज परफॉर्मेंस वाज गुड. उसमें जो है मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था, बट मैं इतना बोलूंगी कि उसने अपना जो प्रेजेंस है ना, मेड पीपल फील हिज प्रेजेंस.
1: करेक्ट.
0: लाइक ऑल्दो हिज रोल वाज लेटर इन द मूवी, लाइक सेकंड हाफ में था एंड ही वाज लाइक यू नो ही वाज लाइक द प्लस वन ऑफ दिव्या भारती एंड ऑल दैट. एंड उसमें जो सैक्रिफाइस करने का मौका मिला वो भी ऋषि कपूर को मिला. लेकिन शाहरुख खान ऑल्सो मेड हिज प्रेजेंस felt. So like usme se I think maybe that's where he people thought that yeah he can act, he can be given different kinds of
1: impactful
0: roles.
1: Impactful ka matlab sirf ye nahi hota ki pehli movie mein hi hit ho gaye ya
0: exactly.
1: Impactful ka matlab ye hota hai ki agar pehli movie mein hi kisi ne spot kar liya ki isme star banne ka potential hai.
0: Yes,
1: that
0: exactly.
1: I think is the impact you need to have.
0: That's the reason I thought that Shahrukh Khan also definitely fits in this you know league of marriage or selections hai. So I'm happy that Zahra is smiling and she's also agreeing with me. अच्छा, और इनके जो इनके परफॉर्मेंस के लिए मैं कितनी रेटिंग दूंगी? I would give 7.5 on 10. You know why? Because it was impactful as in he made his presence felt. लेकिन उनका रोल ऐसा था कि उतना ही हाँ.
1: There's not much you can do.
0: Yeah, but 7.5 is a very good. Actually,
1: still a good score, right? For a debut.
0: All right. So on that note, let's move on. यार अरिजीत सिंह ने गाना गाना क्यों बंद कर दिया? चलो अरिजीत सिंह ने भले ही बंद कर दिया.
1: Can I tell you something? Yeah. गाना गाना बंद कर दिया, but I think he's still singing.
0: He's still singing. Yes,
1: true. He's still not singing, in movies, he's still but performing also.
0: हाँ, performing ठीक है, लेकिन movies में नए गाने नहीं आ रहे.
1: But recently आए हैं एक दो मूवीज में उनके.
0: शायद उन्होंने खत्म कर लिए होंगे रिकॉर्डिंग. अनाउंसमेंट बाद में कर दी.
1: You know, he recently performed somewhere and there's something that I read a comment and now I can't unsee it. Someone said he looks exactly like Ranbir Kapoor's niece.
0: Hey? Niece?
1: Yeah, have you seen Ranbir Kapoor's niece?
0: Nee.
1: He looks exactly like that. I can't unsee it. I will show it to you now.
0: Oh my God! चलो लोग सभी लोग जाके आप लोग अरिजीत सिंह जी की आवाज में इस गाने को सुनिए. मैं जरा niece की शक्ल देख के आती हूँ.
2: Less hustle, more yaadein. That's how weekends should be. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Hey, this is Shirin on the Big Millennial Weekender on Big 106.2. तो जाने से पहले मुझे जोहरा बता रही थी कि कोई क्या था, वो आर्टिकल था पता नहीं क्या था, इतना घोर महापाप कर दिया मेरे को
4: कमेंट था।
3: मैं अनसी नहीं कर पा रही हूँ, जैसे जोहरा ने कहा जोहरा भी नहीं कर पा रही है। तो जोहरा ने मुझे बताया कि अरिजीत सिंह
4: looks exactly like Ranbir Kapoor's niece.
3: Yeah, मेरे को पहले लगा कि वो शायद ज़ोरा को पता नहीं niece nephew का, लेकिन नहीं actually
4: मुझे हाँ मुझे तो पता ही नहीं है niece nephew में फर्क क्या होता है।
3: मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार ऐसे नहीं, हमारी ज़ोरा इतनी भी वो नहीं। फिर मैंने देखा इट्स सो ट्रू ना, मतलब अगर अरिजीत सिंह का पूरा शेव एकदम सफा चट किया जाए और उसके बाद जो है
4: wig लगा दो,
3: हाँ so true,
4: but
3: it's so true.
4: It actually looks like they are related in some way.
3: Yeah,
4: it does look
3: could
4: like
3: could be. Yeah, I don't know if they can be, because
4: I'm just trying to think. Bollywood में ऐसा कोई है क्या जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, but similarity हो शक्ल से?
3: इस topic पे हम अगले हफ्ते discuss
4: कर
3: सकते हैं।
4: Oh no, मैंने ये क्या idea दे दिया श्रीन को?
3: कौन किसके जैसे दिखता है, क्या रिश्ता हो सकता है?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: Alright, फिलहाल जो है हम continue करते हैं हमारे जो है impactful debut in Bollywood. इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लिस्ट में अजय देवगन और शाहरुख खान के नाम के बाद अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सलमान खान का। ठीक है, मैंने प्यार किया, ओके, दैट वाज हिज क्या बोलते हैं फर्स्ट मूवी, दैट्स ट्रू। ऑब्वियसली उनके उससे पहले भी उन्होंने थोड़े बहुत छोटे मोटे रोल्स किए हुए हैं रेखा के साथ, आई थिंक ही वाज देयर इन अ मूवी जिसमें उनको ज्यादा इतना नहीं था रोल, बट देन स्टिल मैंने प्यार किया इज फुल फ्लेज्ड सोलो जो है मूवी, एंड मुझे लगता है दैट वाज डेफिनेटली इम्पैक्टफुल। एक तो मतलब क्या बोलूँ, कबूतर जा गाना हो गया, फ्रेंड वाली टोपी हो गई, आज तक कोई नहीं बोला उसको, ठीक है,
4: बिकेम अ कल्ट मूवी।
3: या एंड वो जो स्टेप है ना, वो दिल दीवाना वाला वो स्टेप मतलब आई मीन आई डोंट नो, कोरियोग्राफर ने उनको वही स्टेप करने को बोला था कि उन्होंने अपना खुद का बनाया लाइक ही यूजुअली डज,
4: बट वो स्टेप, कैन आई टेल यू समथिंग, इसके पीछे मैं अपनी एक स्टोरी लगाना चाहती हूँ,
3: yes,
4: की व्हाट आई अज्यूम
3: हो सकता है,
4: वुड हैव हैपेंड,
3: सी संगत का असर,
4: आई थिंक कोरियोग्राफर का इनके साथ 36 का आंकड़ा हो गया होगा,
3: हो सकता है
4: कुछ बोल दिया होगा उन्होंने, कोरियोग्राफर बहुत गुस्सा हो गए होंगे, मेरे को नहीं करना इसके साथ काम, एंड खुन्नस में उन्होंने कहा मैं इतनी घटिया कोरियोग्राफी बना के दूंगा कि इनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ आई एम द कोरियोग्राफर, यू हैव टू डू व्हाटएवर आई टेल यू टू डू, एंड आई थिंक इन खुन्नस उन्होंने वो घटिया स्टेप बनाया और उनको बोला कि इमोशन भी दिखाओ और ये स्टेप भी करो, एंड आई थिंक दिस इज द,
3: हो सकता है दिस इज वेरी मच पॉसिबल,
4: इन द सेम माइंड यू कैन नॉट पॉसिबली से कि इमोशनल गाने पे आपको ये स्टेप करना
3: है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सलमान खान जी जो हैं वो ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन जो भाग्यश्री अपनी एक्सप्रेशंस डाल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या था, वो दर्द था, पैर में चुभ गया था, कुछ कांटा चुभ रहा था, पता नहीं क्या।
4: नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक दिस शुड बी योर नेक्स्ट टॉपिक,
3: कोरियोग्राफी। गॉड, आई हैव टू रियली नोट डाउन ऑल
4: दिस टॉपिक्स। डू यू रिमेंबर द स्टेप दैट बीच में,
3: ऑफ कोर्स करें,
4: बीच में जो वर्कआउट करने लगे थे संजय दत्त,
3: बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट, बट डेफिनेटली चाहे जैसा भी कोरियो हो, ये डेब्यू तो था उनका, वो इम्पैक्टफुल डेफिनेटली था, डोंट यू एग्री? और
4: एग्री,
3: एंड आई थिंक आई वुड गिव एन 8.5/10,
4: या
3: सो फार, बिकॉज यू नो वो ही कुड रियली क्रिएट सच अ बिग इम्पैक्ट, बिकॉज अभी मैंने जो फूल और कांटे और दीवाना की बात की, शायद ज्यादा लोगों को फिर भी इतना याद, हाँ, बट दिस नोबडी विल फॉरगेट,
4: 100%,
3: सो डेफिनेटली एन 8.5। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो अहेड एंड से लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, राहत फतेह अली खान की आवाज में गाना सुन के वापस आइएगा। दिस इज मी शिरिन ऑन द बिग मिलेनियल वीकेंडर।

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender. Where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: This is Shirin on the Big Millennial Weekender on Big 106.2. ऑल राइट, तो मेरे साथ यहाँ पर जोहरा भी हैं और जोहरा का जो है मैं पूरी तरह से जो है मेरी संगत का असर उन पे हो रहा है क्योंकि आजकल वो भी मेरे जैसे बोलने लग गई हैं.
2: Unfortunately, what to do? Some things are out of my control.
1: Right. तो आज जो है सैटरडे की सुबह को मैं डिस्कस कर रही थी जोहरा के साथ बहुत सारे ऐसे इम्पैक्टफुल डेब्यू परफॉर्मेंसेज ऑफ स्टार्स दैट आर मेमोरेबल, बहुत ही ज्यादा एच हो गई हमारी मेमोरीज में. तो अजय देवगन, शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अब जिसका नाम मैं लेने जा रही हूँ,
2: बेटर बी अ वुमन बिकॉज़ आई एम स्टार्टिंग टू सेंस द डिस्क्रिमिनेशन हियर.
1: नहीं, इसमें जो है वुमन एंड मैन, एक्चुअली इन दोनों का डेब्यू था इस मूवी में. मूवी भले ना चली हो लेकिन ये दोनों स्टार्स को नोटिस जरूर सबने किया और उसमें भी फीमेल स्टार जो है एकदम आउट ऑफ द बाउंड्री, मतलब इतना ज्यादा वो.
2: इज इट अ रेलेवेंटली, आई मीन रिलेटिवली न्यू मूवी?
1: नहीं जान, नहीं यार इतना न्यू भी नहीं. 2000 रिलीज है, 2000 का रिलीज है, ईयर 2000.
2: कैन आई गेस?
1: बोलो.
2: नो, बट वाज दिस हिज डेब्यू? आई डोंट नो. इशक ज़ादे?
1: नहीं, वो तो और थोड़ी बाद में
2: और आ गया.
1: या
2: ओके,
1: बोलो. करीना कपूर एंड अभिषेक बच्चन, रिफ्यूजी. यस, द मूवी जेपी दत्ता जी की मूवी थी एंड एवरीबॉडी हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. अमिताभ बच्चन के बेटे का डेब्यू, दैट वाज लाइक यू नो द टॉक ऑफ द टाउन. बैक देन सोशल मीडिया नहीं था,
2: लेकिन आई डोंट रिमेम्बर मच ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी.
1: नॉट दैट्स द थिंग, बट देन यू नो पीपल एटलीस्ट कुड नोटिस कि हाँ अमिताभ बच्चन जी के बेटे आ गए हैं. अब चाहे वो एक्टिंग करें या ना करें लेकिन उनको हमें अपनी मूवी मिली.
2: आई डोंट थिंक देन दैट वाज हिज डेब्यू दैट वाज इंपैक्टफुल. इट वाज व्हाट वाज इंपैक्टफुल वाज हिज नेम.
1: हां, व्हाटएवर. ओके, नाउ द थिंग इज दैट इंपैक्ट, जैसे यू सेड ना कि एक तो ये हो सकता है कि हमने जितना अपना इंपॉर्टेंट, अपना जो है प्रेजेंस दिखाया उसमें, या तो हमें जो रोल मिला उसकी वजह से. अब इनके इसमें था ऑब्वियसली फादर का जो सरनेम है उसके वजह से था, एंड इम्पैक्ट इसलिए बना क्योंकि एज अ पेयर देवर टॉक्ड अबाउट, देवर लाइक हाँ इनकी जोड़ी अच्छी है एंड यू नो देवर लाइक दे डिड अ गुड जॉब एंड ऑल दैट. बट देन करीना कपूर जी का जो नाम है थोड़ा सा और, या शी स्टूड आउट रियली वेल. उसके बाद शी टुक अ वाइल टू कम बैक इन विद अनदर मूवी, बट देन स्टिल शी कुड ऑल्सो यू नो एक्चुअली मेक अदर्स फील अ प्रेजेंस. एंड अनदर थिंग इज कि जेपी दत्ता जी की जितनी भी मूवीज हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता है ऑब्वियसली द स्टोरी, बट ऑल्सो द सॉन्ग्स. एंड द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी,
2: ब्यूटिफुल
1: सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल अमेजिंग कंपोजिशंस बाय अनु मलिक. बहुत सारे लोग सोचते भी है कि अनु मलिक जी का कंपोजिशन
2: गाने बनाते हैं इतने अच्छे.
1: नहीं यार, बट अनु मलिक के इतने
2: सारे, he knows what gets people moving.
1: Yeah, exactly, that's what. तो अभी जो है इसमें गाने भी अच्छे थे, एवरीथिंग लाइक एज इन ऑल एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है. ऑब्वियसली अभिषेक बच्चन जी को जो है आज तक मुझे नहीं लगता कि
2: अभिषेक बच्चन को किसी ने याद ही नहीं रखा.
1: लेकिन मैं करीना कपूर का नाम ज्यादा इस पे हाईलाइट करूंगी. अभिषेक बच्चन की भी मतलब उनका भी था ना डेब्यू, तो इसलिए उनका नाम भी. बट इसमें मैं
2: पार्शियली एग्री विद यू,
1: तो मैं अभी सेपरेटली इन दोनों को स्कोर करूंगी. करीना कपूर को आई वुड डू गिव 7 out of 10 एंड अभिषेक बच्चन को 6.5. उस मूवी में देखो करीना
2: ठंडे थे,
1: दोनों ही
2: डाला क्यों ये
1: नहीं. लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ा ना, लोगों को समझ तो आया ना कि यार दोनों निकले हुए हैं अभी जो
2: है. अच्छा, सेफ शिरिन की तरफ से.
1: करिश्मा कपूर की बहन आई है और अमिताभ बच्चन के बेटे आए हैं, ये समझ में आ गया लोगों को, इसीलिए मैं इसको इस लिस्ट में डालना चाहूंगी. ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स मूव अहेड एंड अगला गाना सुन के जल्दी से आइएगा वापस. और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हो कि आप लोग जो है ये सब चॉइसेस से एग्री करते हो कि नहीं. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स एक्चुअली. ओके, आई मस्ट टेल अबाउट दैट. इसके बारे में अगले सेट में मैं बात करूंगी. दिस इज श्रिन ऑन द बिग मिलेनियल वीकेंडर ऑन बिग 106.2.

0: मॉर्निंग्स को स्पेशल बनाने के लिए बावरा मन जैसा गाना. ओहो, व्हाट अ चॉइस. ऑलराइट, दिस इज मी शिरिन ऑन द बिग मिलेनियल वीकेंडर ऑन बिग 106.2. मेरे साथ हैं जोहरा, और जोहरा को जो है मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इरिटेट कर रही हूँ, क्योंकि
1: जोहरा को वो दौरा दे रही है.
0: नहीं, दौरा देने में अभी दो और नाम मैं बोलने वाली हूँ. ठीक है, अभी नेक्स्ट नेम आई थिंक शी विल एग्री विथ मी. ठीक है, अभी ये जो है ये ड्रीम डेब्यू है. ओके, दिस इज अ ड्रीम डेब्यू. अगर मुझे कल पूछा जाए कि तुम्हें कैसा वाला डेब्यू चाहिए, ठीक है, अगर भगवान मुझसे,
2: मैं
0: थोड़े से न्यूअर, बट रुको पहले मैं बोलूं, भगवान मुझसे आके पूछते हैं कि बताओ शिरिन तुम्हें कैसा डेब्यू चाहिए, मैं बोलूंगी मुझे ऐसा डेब्यू चाहिए, यू नो, तो वैसी वाली एक एक्ट्रेस, ऑब्वियसली बोलो,
1: दीपिका पादुकोण.
2: That is dream debut because yes. you get to first of all be launched in Bollywood.
0: Yes.
2: You get to work alongside one of the greatest,
0: yes.
2: one of the nahi, the greatest yes. names in the industry,
0: Shah Rukh Khan.
2: Yeah. एंड उसका वो इम्पैक्ट बन के भी रह जाता है, पीपल रिमेम्बर दिस मूवी. आई डोंट थिंक वो उस टाइम पे हिट हुई थी, राइट?
0: उस टाइम पे इतनी नहीं चली थी, बट स्टिल द सॉन्ग्स वर फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन. धीरे धीरे वो हिट हुई थी, बट मुझे उसमें ऐसी इतनी सारी एलिमेंट्स थे उस मूवी में.
2: आई थिंक एवरीवन फेल इन लव विद द मूवी इयर्स आफ्टर द मूवी.
0: यस, एग्जैक्टली. पता नहीं क्यों ऐसे बन जाते हैं कई बाद में.
2: हाँ. हमें इन द मोमेंट पता नहीं होता. इट्स लाइक यू नो यू से दैट व्हेन यू हैव समथिंग यू डोंट रियलाइज इट्स वर्थ.
0: यस,
2: वो निकल जाता है आगे, तब आपको एहसास होता है.
0: एग्जैक्टली.
2: तो ये मूवी जब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड बन गई तब हमें याद आया, अरे ये तो कितनी हॉट थी.
0: वेरी ट्रू. लेकिन एक बात बोलूं, वॉट एवर सेड एंड डन, उस टाइम पे भले हिट हुई या हो या ना हो, बट सब लोग शांति प्रिया को याद करते हैं. दीपिका पादुकोण का जो इम्पैक्ट था, दैट वाज डेफिनेटली टॉक्ड
2: अबाउट. आई थिंक एवरी बॉलीवुड कॉस्ट्यूम पार्टी, नॉट अ सिंगल पार्टी समवन हैज नॉट ड्रेस्ड अप एज शांति प्रिया इन द पिंक आउटफिट एंड वेव्ड लाइक दैट.
0: एग्जैक्टली, दैट वेव यार, वो मतलब वो वेव करने के लिए मुझे अपनी उंगलियों का लेंथ पहले तो बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद सीरियसली सच लॉन्ग फिंगर्स, एंड देयर वाज सो मच टॉक अबाउट दैट मूवी. एंड डू यू नो ज़ोहरा, आई डोंट नो, सिंस यू ऑल्सो फॉलो Bollywood so much, maybe you know about it. इसमें फराह खान ना छोटे छोटे messages like she puts, like for example, एक जो उसमें वो जो जहाँ पे उसको जलाते हैं शांति प्रिया को, अर्जुन रामपाल का जो रोल, तो उसमें did you notice that पहले उसके 5 roses थे सिर पे, एक एक पॉइंट पे एक एक रोज गिर जाता है, by the end when she's almost going to die, there's only one rose left.
2: So
0: it's like lifeline going.
2: I did not know
0: yes,
2: that.
0: Yes, yes. You must definitely.
2: So interesting.
0: Yeah.
2: Wow, Shirin has impressed me.
0: So, aise hi bahut sari cheeze Farah Khan ne us movie mein dali hai. And not just that movie, a lot of movies that she has made. Main Hoon Na Ho ya anything, you know. Everywhere you can see kuch na kuch aise secret rehta hai. And सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये धूमताना जो गाना है, उसमें जो जो हमारे यस्टर ईयर्स के एक्टर्स हैं, उनको और दीपिका के जो उसको कंबाइन करके जो उन्होंने बना, दैट इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग, एंड आई वुड वांट अ रोल लाइक दैट, ताकि भले मुझे एक्टिंग आती हो या ना हो, कम से कम मेरा इम्पैक्ट तो पड़ेगा कुछ ना कुछ करके. ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो इसमें आई थिंक आई वुड डेफिनेटली गिव अ
2: कैरेक्टर का नाम, मैंने अभी सोचा शांति प्रिय की जगह शांति भंग प्रिय होंगी, क्योंकि मेरी तो शांति भंग ही करती है.
0: ओह माय गॉड, आई लव दैट. चलो, शांति भंग प्रिया को जो है डायरेक्ट करेंगी, जोरा को आ गया दौरा. ओके, चलो, तो आई थिंक आई वुड गिव दीपिका पादुकोण, नॉट फॉर यू नो फॉर हर एक्टिंग स्किल्स, बट फॉर हर इम्पैक्ट, आई वुड गिव 10/10. I really would give 10/10. Yeah.
2: Nine
0: she was very lucky. She was very lucky.
2: Agreed.
0: Yeah. So on that note, let's go on and listen to the next song. And jo hai hum fir se aayenge wapas. Aur iske baad jo main revelation dene wali hu, jo main baat karne wali hu, jis star ke bare mein, I think sabke man mein ye star ka naam zarur hoga. Let me know. You have to DM me on hustler_Shirin. For now, let's go and listen to the next song.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the Beat of Bollywood.
2: All right, we are almost coming to the end of the show. This is me, Shirin, on Big Millennial Weekender, Big 106.2. तो अब जो है आज हमने इतनी सारी स्टार्स के जो है डेब्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया. अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, सबके नाम ले लिए, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण. अब जो नाम मैं लेने वाली हूँ इसमें तो जो है जोहरा नो बोल ही नहीं सकती. बिल्कुल नहीं बोल सकती. मैं गारंटी करके बोलती हूँ.
3: एक्टर. ओके, हिंट देना.
2: नहीं दूंगी हिंट.
3: यही हिंट है
2: कि ये हिस्ट्री, मतलब एटलीस्ट इंडियन बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन डेब्यूज में से एक है.
3: यंगर एक्टर या ओल्डर एक्टर?
2: अभी के हिसाब से थोड़ा ओल्डर ही है. चलो एक एक शब्द मैं बोल देती हूँ, दो शब्द बोल देती हूँ, समझ आ जाएगा यार. बोलू? ग्रीक गॉड.
3: अरे यार, हमारे ऋतिक रोशन.
2: यस, डोंट यू थिंक, डोंट यू एग्री? ऋतिक रोशन का कहोना प्यार है डेब्यू. माय गॉड, व्हाट वाज दैट? मतलब कैन यू इमेजिन रेफ्यूजी मूवी एंड कहोना प्यार है रिलीज्ड इन द सेम ईयर. Although people did notice Abhishek Bachchan and Kareena Kapoor, more Kareena Kapoor, but Hrithik Roshan jab aaya to unhone bola inko thoda side mein rakho. Hrithik, ye kaun hai? Ye, who is this
3: Everyone
2: guy?
3: Everyone was mind blown by the debuts that year.
2: Yes, because Rakesh Roshan himself was not a very, very great star in his times. He was like, he was one of the good actors, that's it. Aur unke jo chacha hai, that is Hrithik ke chacha, Rajesh Roshan, he was also known for his music, but not really like unki music ko itna zyada, you know, kya bolu, they were not talked about much. You know, the songs theek hai, matlab copy karte hain, ye karte hain, wo karte hain, aise sab log bolte the, but when the songs in kahona pyar, I mean everything about the movie hai na, like obviously the story thoda sa make believe sa hai, matlab tumhari hamshakal aa jata hai and all that, but whatever. Hrithik Roshan
3: made
2: is amazing. Yeah, and I feel that usme pehle, you know, right, pehle Amisha Patel ki jagah pe Kareena Kapoor thi. Yeah, and Kareena Kapoor for some reason left the movie and then Amisha had to fill in. So इस movie में even now if you actually zoom and see जो दूर वाले shots हैं अभी भी Kareena Kapoor ही है उसमें.
3: Ooh, yeah. I haven't seen that. I've noticed
2: you should
3: that.
2: See. I'll especially tell you which scene. Okay? इसमें क्या होता है, जो वो क्या बोलते हैं नदी नहीं, क्या सी, हाँ सी के किनारे वो लोग चल के आ रहे होते हैं ऋतिक एंड करीना. उसमें जो है इफ यू सी, यू कैन एक्चुअली सी दैट इज करीना. बट सिंस करीना एंड अमीशा हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, इतना डिफरेंस नहीं समझ में आएगा छोड़ के, उन्होंने वो छोड़ दिया.
3: यू नो,
2: या सो दैट्स देयर. बट आई फील दैट इफ करीना वुड हैव कम इन दिस मूवी, आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है इस मूवी में.
3: देन आई थिंक इट वाज इजियर फॉर ऋतिक टू हैव एन इम्पैक्ट बिकॉज अमीशा उनके साथ ही. आई फील लाइक इफ करीना वुड हैव बीन विद हिम, मे बी शी वुड हैव ट्राइड टू स्टील हिज थंडर.
2: कुड बी, कुड बी, या मे बी वही रीजन था वो चली गई, क्या पता. दैट कुड आल्सो बी पॉसिबल.
3: इट वाज एन ईगो क्लैश.
2: यस, हो सकता है. एंड आई थिंक अमीशा आल्सो काइंड ऑफ, या थोड़ा इम्पैक्ट रहा उनका, बट देन स्टिल लाइक अ लिटिल फॉरगेटेबल. बट ऋतिक रोशन को तो आज तक कोई नहीं भूला.
3: 100%.
2: एंड आई थिंक दैट इज लाइक 100 on 10. It's not even 10 on 10, it's 100
3: on
2: 10.
3: Scale it. Yes. There is no scale for Hrithik Roshan.
2: Scale toot gaya. Right? So on that note, it is time for me to say bye-bye. Aur jo hai agle hafte hum fir milenge, agle Saturday ko ek aur bahut hi atpate amazing topic ke saath.
3: Maine diye do teen ideas, dekhte hain kya karti hai Shirin. Yes. Shanti Bhang Priya.
2: Yes, main Shanti Bhang Priya aane wali hu. All right. So this is me, Shirin, signing off on the Big Millennial Weekender on Big 106.2. Agle hafte fir milenge. Have a great, great day.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अलगिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: आप सुन रहे हैं बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।